ठीक नहीं सी किस्मत मेरी इन्हीं ठीक नहीं सी पर तेरी तो है उम्मीद नहीं सी औखी सौखी जिन बीत रही सी पर तेरी तो है उम्मीद नहीं सी तो है उम्मीद नहीं सी किस्मत मेरी इन्हीं ठीक नहीं सी पर तेरी तो है उम्मीद नहीं सी तो है उम्मीद नहीं सी औखी सौखी जिन